0: दिनका कामो टाटल बयाल बहक निसेक जाए मै त बिहान नि खेतवा जाए टुना खाए
1: बाबा लोई छाता थेले जाओ खेतवा से लौटा बेर महा कर घाम रखा
0: ए का बिस्रिनु कलक त छाता बिसाई टुका हुँ लान त छाता ओहो मै त एक पानी बोटलिङ जीवन जल्दै मिलाइ बिस्रानु
1: तु बिस्राजी ठकैका मै त मन पानी जीवन जल मिला खाडेर रोक्नु बाबा बेन्सु यी पानी भरि सक्कु पि हो ना पस्ना नस्य निकर्क जो सुक्खा हो जाटका
0: पटवा मही अब बिहानका काम दिनका आराम
1: हा त बिहान काम दिनका आराम
2: गर्मी मौसममा लु चिटिङ्गा घामन से बचकला छाटा नकि कपार छोप पनिङ्गी ध्यार से ध्यार पानी पी शरीर जू ढरक लाग मौसमी फलफुल खाई ओ घर स्कूल के छानी जुरार बनेना जुगार लगाई
3: प्लान इंटरनेशनल नेपाल ओ भेरी वातावरणीय विशेषता समूह बी ग्रुप की साझेदारी में बर्दिया जिला में संचालन हुई रहल विपद पूर्व तैयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा जनहित के लाग जारी संदेश
4: के रेडियो ठाउँ ठाउँ के आवाज रेडियो टाइगर उनान्जे बुढा दुने

0: मैं चट्टान से कूदने जा रही हूँ तो मेरी बहनों से तुम्हें बता रही हूँ।
1: पर क्यों?
0: क्योंकि ये देखो #you #out #home और उसे भी लगता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी

0: Sayı da sen değil ay.
1: You killed me.
2: What happened? I was in love
0: with you. Okay, thank you. Exactly at 10 a.m. आज मेरा ब्रेकअप हो गया, इसलिए जिसके साथ आना था वो आया नहीं, बचा मेरा ब्रोकन हार्ट और ये ब्रोकन फोन, जो किसका है पता नहीं, पर इसका वॉइस नोट, वाह, मेरे शो में मेरा साथी बन गया। पर अब शायद इस वॉइस नोट में मेरे साथ